0: námi.
1: Many blessings from Gurudev.
0: Mnoho požehnání od Gurudeva.
1: Much love from me.
0: Posílá vám mnoho lásky.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shalapurji mahadeva ki jai devadi devdeveshwar mahadeva ki jai shridip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansa swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki jai विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंद पुरी जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय माता पिता गुरुदेव की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।

श्री श्री देव पुरी सा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति ही।

नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

0: गुरु प्रजाभ्यः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। उमामहेश्वराभ्य नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्य नमः। शशिपुरन्द्राभ्य नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय। जय वैश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंद
0: भगवान की जय।
1: सर्व ओम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की
0: जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चल लोटा और भी ले लो दो चार।
1: पर पहले पूछो चटम।
2: ये जोधपुर संभाग में दो ही है कोई एक ही लड़ा है।
1: हाँ बिलड़ा एक ही है लिरोप।
0: ॐ ऐं गमन्दा देवतानि धर्माणि विरुद्धं मन्याजन देहेनाकः महिमानाशसन्दया पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय विप्रसैने नमो वयं विस्मरणाय कुर्महे सम्यक् कामान् कामकामाय मयं कामेश्वरो वेश्वरो ददातु। कुबेराय विश्वनाय महाराजाय महिमन्दप्रियाशात् सार्वभौम सार्वयुषण दादा पृथ्वी समुद्र पर्यंत। लोटा एक एक और भी दे दो। आप लोटा लो और कुछ नहीं। महाराज जाओ फिर मन अवतारपुरी निरंजनपुरी जी। ओम त्योह शांति रंत्रिक्षाम गोम शांति पृथ्वी शांति रावा शांति औषधया शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति रेव शांति सामा शांति।
3: गुड गुड।
0: हाँ मंगलेश मंगलेश
3: मंगलेश
0: मंगलेश प्लीज।
3: हाँ गुड
0: गुड। किचन किचन किचन
3: बस यही कर रहा
0: है। हाँ ये माला
3: बाजी आप लगाओ।
0: हाँ बाजी दीपक को दूसरा कर। ये माला आपके उधर से माला उधर में
3: वो तो दो करो जाने भी नहीं।
0: हाँ और हाँ हाँ तो जो बड़ी हो जाएगी और बंदवा दो उसको करके बांध दे तो पकड़ लो। ये नहीं बंद हो गई।
1: छोड़ दो छोड़ दो।
0: तीन चार जने साथ में खड़े रह करके
1: ये
3: और
1: माला भी उधर जोड़ो है।
0: एक माला दो लगाऊं
1: दो दो
0: ना ये भी लगाऊं।
1: आओ
0: है आओ ये माला नहीं भी लगाऊं बाप जी।
1: बस ठीक हो गया।
0: ऊपर ऊपर टांग दो तो
4: जल लो भाई। भूषण जी
5: जी सर
4: गुरु जी के जल चढ़ाते हुए अवतार पूरी
6: इधर
4: आ जाओ सामने से जल चढ़ाते हुए चार सौ लोटे। ये भी माला हो जाएगा ऊपर में।
1: एक उन डाले लगाओ पंतिकल का। हाँ आओ आगले
4: बाजी इधर सामने आकर चलाते हुए सामने इधर हाँ दिखते हुए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षां शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः।

0: शमीहसे ततोऽज्ञानाकुरु प्रजाभ्य अभ्यशुशान्तिर्भवतु। नमः
1: पार्वतीपते हर हर महादेव।
0: दीप नारायण
1: भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: सम्राट माधवानंद जी
1: भगवान की जय।
0: गुरु महामंडलेश्वर योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पुरुष सदगुरु
1: देव की
0: जय। सत्य सनातन
1: धर्म की
0: जय। पार्वती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पुरुषा महादेव की
1: जय।
0: देव पुरुषा महादेव की
2: जय।
0: दीपेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की
2: जय।
0: शुभ्र महामंडलेश्वर योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य सदगुरु देव की
2: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
2: जय।
0: आज के आनंद की
2: जय।

नारायणम् ॐ नमो श्री प्रभु दीप नारायण श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की ओम शांति शांति।

0: देव पुरुष महादेव
1: जय।
0: ओम शांति
2: महामंडलेश्वर का स्वामी महेश्वर नाम
1: गुरुदेव।

गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मंचस्थ महामंडलेश्वर जी, ज्ञानेश्वर कुरु जी, जोधपुर से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी और कपिल जी, फूलपुरी जी, महामंडलेश्वर फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी और यहाँ के सभी अध्यापक वृंद, आए हुए हमारे अतिथि झूमरलाल जी और समस्त विद्यार्थी गणों, आज के शुभ अवसर पर आज द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव का द्वितीय पाठोत्सव को हमने मनाया है और बड़े धूमधाम समारोह पूर्वक महादेव जी का अभिषेक करते हुए हमने उनका शुभारंभ किया है और दूसरा पाठोत्सव इसको हमने बनाया है। इसको वर्षगांठ भी कहते हैं और वास्तव में इसको पाठोत्सव भी कहते हैं। पाठोत्सव का अर्थ है पाठ का मतलब खोलना और उत्सव का मतलब सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी पाठोत्सव तो हमने मनाया। अब इस अवसर पर मैं अपने दो शब्द आपको, क्यों चूंकि विद्यार्थी हमारे समक्ष बैठे हैं और गुरुजन हमारे समक्ष बैठे हैं तो एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, क्योंकि स्वामी महेश्वरानंद जी ने दैनिक जीवन में योग की परंपरा को स्थापित करते हुए हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी अपनी एक शिक्षा दी है। दैनिक योग के साथ साथ आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार को शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने बल दिया। हम भारतीय लोग भी आहार शुद्धि रखते हैं और आहार शुद्धि रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि आहार से हमारा मन शुद्ध होता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व का मतलब हमारा ये शरीर, भौतिक शरीर, हमारा जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा। इसलिए आयुर्वेद में, सुश्रुत ने, बड़े बड़े चरक आचार्यों ने आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अगर हमारा ये सत्व, हमारा शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा तो हमारे स्मृति जो को, जिनको कहते हैं मेमोरी, स्मृति, ये एकदम स्थायी रूप से हो जाएगी और जो भी हम याद करेंगे वो तत्काल हम पूर्ण रूप से उसको याद कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो एक पुस्तक को आगे से पढ़ना प्रारंभ करते थे, पीछे तक पढ़े बिना उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे और उसको पूरा पढ़ करके उसका पूरा पूरा नॉलेज क्या होता है वो स्वामी विवेकानंद जी को तत्काल ज्ञात हो जाता, क्योंकि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। तो बच्चों, हमें अपने आहार को सुधारना है। यदि आहार सुधर गया तो हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क और पूरा वातावरण सुधर जाएगा। तब आप लोग कह सकते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अवतरित होता हूँ। वो ईश्वर आप में ही अवतरित होगा, अपने आप को स्वयं को बनाएंगे तो अवश्य ही इस पूरे संसार में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत कर पाएंगे। तो बच्चों, विवेकानंद जी ने भी कहा है उठो, जगो और चलो अपने मार्ग पर। आपका कौन सा मार्ग है जो आपके प्रारब्ध ने आपको निश्चित करके संसार में भेजा है? इतना कह करके एक साथ एक भगवान की धुनी करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलेंगे दीप।

0: और होते रहे हैं। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की, होली गुरु जी माधवानंद जी गुरुदेव की, देव पुरुषा महादेव की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी गुरुदेव की, आज के आनंद के।
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुदेव नमः। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आज स्वामी जी ने आपको सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने अभी आपकी सबकी फ़ोटो स्वामी जी को भेजी है, तो वो बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी फुलपुरी जी, जोधपुर से आए हुए हमारे संतजन, हमारे राजेंद्रपुरी जी, छगन जी, चंदन जी, हमारे माधव जी, और हमारे विदेशी भक्त जो इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव देख रहे हैं अपने अपने देशों में, और इस स्कूल के आपके सुरेश जी गर्ग और इतने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप सबका मैं स्वामी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको ये विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमारा जो दुनिया का 8वां अजूबा है ओम आश्रम, उसकी 2nd एनिवर्सरी है। मतलब आज के दिन हमारे इसकी उद्घाटन हुआ था, 2 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, उद्घाटन हुए हुए। तो इस आश्रम के बारे में और स्वामी जी ने जो ये बनाया है आश्रम के बारे में, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये पहला मानव निर्मित भवन है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में एक ऐसा अजूबा है जो पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, और इसकी सारी जो ख्याति है और जो इसकी जो महिमा है वो सारी हमारे जो साधु संत हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये पहला ऐसा सेंटर है जिसमें करीबन इतने सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा सनातन धर्म में जो ताकत है वो पूरी स्वामी जी ने विदेशों तक फैलाई है, और उसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस उम्र में अगर आके और जिस सनातन धर्म का ये सुन रहे हैं ओम आश्रम के बारे में, तो ये एक हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
2: ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वान्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम साईं महेश्वरानंद जी को प्रणाम करता हुआ अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा। आपको तो वैसे सबको इंग्लिश तो आती ही है, क्योंकि आधा आधा इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 2nd एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ ओम आश्रम। Today we have a great guest. We can say our friends, our colleagues, our well-wishers. Mahamandaleshwaram Shri Swarupananji Maharaj from Jodhpur. He is excellent speaker on all kathas or Ramayan, on Shiv Puran, Bhagavad Katha. He speaks on Advaita Vedanta, on Upanishads, in many places. He has his ashram in Jodhpur, Ahmedabad. He's traveling very often and many, many places. Beside him, you can see our Swami, Mahamandaleshwar Swami, Chetan Giriji Maharaj from Sojat. He's connected with us for the last 40 years. So I'm very

0: பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் வாதராயணம் சூத்ரபாஷ்ய க்ருதௌ வந்தே பகவந்தௌ புனா புனா. ஈஸ்வரோ குரு ஆத்மேதி மூர்த்தி பேத விவாகினே வ்யோமவத் வ்யாப்த தேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தே நம. ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தே நம. ஸ்ரீ ஓம் குருகுல் இஷ் ஆசிரம் கே பவித் பிராங்கண் மே ஆஜ் ஹம் சப் இஸ் ஓம்கார் ஸ்வரூப் திவ்ய தஸ்ய ஓத்ப்ரோத் பரம்பிதா பரமேஸ்வர் கி ஆபாசே சமாயா ஹுவா சந்தோ ஓர் ரிஷியோ கி சாதனா சே திவ்ய ஜோத் சே பிரகாசித் ஹோத்தே ஹுயே இஸ் ஓம் ஆசிரம் கே தித்திய வார்ஷிக் உத்ஸவ் பர் உபஸ்தித் மஞ்ச் கே ஊபர் ஹமாரே ஸ்ரீ பஞ்சாயத்தி மஹாநிர்வாணி அக்கடே கே பிராத ஸ்மரணிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ 1008 ஸ்ரீ சிவஸ்வரூபானந்த் ஜி மகாராஜ் ஓர் இசி ஓம் ஆசிரம் கே பூஜ்ய குருதேவ் மகாமண்டலேஸ்வர் விஷ்ணு குரு மேசோன்ஜிக்கு சிஷிய மகாமண்டலேஸ்வர் ஜானபுரிஜி ஜானபுரிஜி ஜானேஸ்வர் புரிஜி ஓர் பூஜ்ய குருதேவ் மேசோன்ஜிக்கு ஹி சிஷிய மகாமண்டலேஸ்வர் ஸ்ரீ ஃபூல்புரிஜி ஓர் உன்னிக்கு சிஷிய ராஜேந்திரபுரிஜி ஓர் யா பர் மஞ்ச் பர் உபஸ்தித் சமஸ்த் அதிதி ஆசிரம் கே ஆத்மீயத்தா சே ஜுடி ஹுயி சபி. ஓர் ஆஜ் இஸ் ஆசிரம் கி ஓம் ஆசிரம் கி மந்திர கி பிராண பிரதிஷ்டா தித்திய உத்ஸவ் கே வார்ஷிக் உத்ஸவ் பர் உபஸ்தித் சமஸ்த் பச்சோ பியாரே பச்சியோ தியான் தேனா ஏக் ஹமாரா மந்திர ஹை ஆப் வித்யார்த்தி ஹை ஓர் இஸ் ஆசிரம் சே யதா நாம் ததா குண ஜெஸா நாம் ஹை வைசா யஹா பர் குண சன்ஸ்கிருதி பாரத் கி ஜோ ஹை உஸ்ஸே ஓத்ப்ரோத் யஹா பர் ஜாதா ஹை. ந குரோர் அதிகம் தத்துவம் ந குரோர் அதிகம் தப தத்துவ ஜானாத் பரம் நாஸ்தி தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஆப் வித்யார்த்தி ஹை வித்யார்த்தியோ கா சப்சே ஜீவன் கே அந்தர் சப்சே படா ஈஸ்வரி ஹை வோ வித்யா ஹை. வித்யார்த்தியோ கி சப்சே படி யதி கோய் ஐஸ்வர்ய ஹை வோ வித்யா ஹி ஹை. ஓர் வித்யா கோ பச்சோ தியான் தேனா பாத் கோ ஆப் கேட் கி தரப் ஆப் தியான் நீ தே जिनको बाहर जाना तो जाइए, बच्चों का ध्यान बार बार उधर जा रहा है। बच्चे आपके जीवन के सबसे बड़ा ऐश्वर्य विद्या है, और विद्या जो है ना, अब अपनी मारवाड़ी भाषा में थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे, कि हम किसी से यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वहां अपन पुत्र बनकर के, शिष्य बनकर के, पूर्ण शनाकत धारण करके हम अर्जित कर सकते हैं। बाकी कोई व्यक्ति अपने अहंकार से, अभिमान से या घमंड से कोई किसी से कुछ नहीं अर्जित कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए जीवन के अंदर गुरु से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है, ना गुरु और अधिकम तत्व। गुरु शब्द का अर्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव मेसरन जी ने पूरे विश्व के अंदर जिस ज्ञान का प्रकाश फैला करके पूरे विश्व के प्राणियों का ध्यान भारत भूमि की तरफ, और उसी भारत भूमि के अंदर राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान के अंदर ही भी वो पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला, और पाली जिले के अंदर ही ये पाली और सोजत के बीच में ये डाडन जो भूमि है, जहां पर जो अभी अभी बताया गया कि विश्व का ये आठवां अजूबा जो ओमकार का स्वरूप में यहां पर दिव्यता से उत्पूर्ति ओम आश्रम की स्थापना, तो वो जो ज्ञान जो अपन को अज्ञान पे अंधकार से हटा करके ज्ञान पे प्रकाश की तरफ जो अपन को बढ़ाए, उनको गुरु कहा गया है। अपन आज कम से कम यहां पर अभी जो विद्यार्थी है करीब 480 और 500 के बीच में यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं। अपन सब यहां से अपने जीवन का तत्व जान रहे हैं। हाँ, आप एक भाषा को तो सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सब भाषा जीवन के तत्व को जानने का एक माध्यम है। गुरु से बढ़कर के इस जगत के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, ना गुरु अधिकम तत्व। गुरु से बढ़कर के कोई जीवन के अंदर अपना तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ना गुरु अधिकम तप, गुरु से बढ़कर के कोई तप नहीं। हमने देखा है कि जिस समय इस आश्रम की यहां पर कुछ नहीं था, जंगल था, बबूल आदि यहां पर झाड़ियां खड़ी थी, परंतु विश्व गुरु महामंडलेश्वर जब महेश्वरानंद जी महाराज की वो शुभ दृष्टि का पात हुआ इस भूमि पर, उनकी जब नजर यहां पर पड़ी तो यहां पर देखिए, जहां संत है वहां वसंत है। यहां पर पूज्य गुरुदेव की नजर पड़ी और गुरु जी का माधवन जी की भी कृपा हुई, और यहां पर इस जहां पर कांटों की झाड़ियां थी, आज यहां पर पूरे विश्व के अंदर लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। ये संत, जहां संत है वहां वसंत है, वसंत का मतलब आनंद है, और जिस आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, ओपोजिट वर्ड नहीं है, सुख का दुख है, लाभ कहानी है, जय का पराजय है, परंतु आनंद का कोई विलोम ओपोजिट शब्द नहीं है। तो ये गुरु की ही तप तपस्या है कि एक 25 साल के अंदर इतना भव्य, सही पूछो तो कभी कभी तो हमारे मन में भी आता था कि महेश्वरानंद जी महाराज ने इतना बड़ा ओमकार का ये स्वरूप जो आकृति ली है, ये किस तरह से पूर्ण होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक क्षणिक जीवन होता है, किस समय क्या हो सकता है, अगले पल की जिनकी कोई खबर नहीं। और वो आज ध्यान देना बच्चों, ये गुरुजी की बहुत ही महत्व तप है, जिनसे तब से जाकर के उनके जीवन काल में ही ये ओमकार स्वरूप का जो विश्व का आठवां अजूबा है बनकर के आपके हाथों से ही 2 साल पहले सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में यहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ना गुरोर अधिकम तत्वम ना गुरोर अधिकम तपः, गुरु से बढ़कर के और कोई तप नहीं हो सकता है। ना गुरोर अधिकम तत्वम ना गुरु अधिकम तपः, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति। ध्यान देना, इसी ओम आश्रम से जो भारत भूमि, जो ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां भारत से सदैव और जिस विद्या के कारण, जिन ज्ञान के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया और आज भी है, ऐसी बात नहीं, जो ब्रह्म विद्या है, जो हमारे वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान भारत को छोड़ करके और विश्व के अंदर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या जो समस्त विद्याओं की राजा है, जो गोपनीय विद्या है, वो गोपनीय विद्या यहां ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान की जाती है। ना गुरुर अधिकम तत्व ना गुरुर अधिकम तप, तत्व क्या ना, जो ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं का सार है, वो ज्ञान का सूत्र इस ओम आश्रम से निरंतर। और गुरुजी ने पूरी पृथ्वी का जो वसुंधरा है, अनेकों बार पूरी वसुंधरा का भ्रमण करके एक बात और समझना, पूज्य महेश्वरानंद जी ने पूरी पृथ्वी का अनेक बार भ्रमण करके इस वसुंधरा और पूरे ब्रह्मांड का सार जो वेदों के अंदर भी बताया है, वो ओमकार उस निचोड़ को अपने जीवन में साधना बना करके उस साधन तत्व को यहां पर इस भारत भूमि पर अपनी ये डार्डन की भूमि पर उन्होंने स्थापित करके जगत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन का यदि कोई सार है तो वो ओम ही है। इसलिए ध्यान देना, आवता हरि ओम बोलो, बैठते भी हरि ओम बोलो, उड़ते भी हरि ओम बोलो, सुबह भी हरि ओम बोलो, उगड़ते प्रभात आप हरि ओम बोलो, यही जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है बच्चों, अपने जीवन के अंदर सर्दावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, जो अपने गुरुजनों के प्रति, गुरु का मतलब आप समझ लेना, गुरु से जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो गुरु है ही है, परंतु हमारे परिवार में भी, हमारे कुटुंब के अंदर भी, जो हमारे बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए, सत्कार के साथ में आदर रहेगा, उनके प्रति हमारा मान रहेगा, सम्मान रहेगा, उनके प्रति पूर्ण शरणागति होगी, समर्पण होगा, उनके चरणों के अंदर जब अपन अपने जीवन को पूर्ण निछावर कर देंगे, तभी जाकर के वो तत्व का ज्ञान अपन को प्रकाशित होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के, और वो भी श्रद्धा कैसी, आदर युक्त। एक श्रद्धा तो वो भी होती है भैया, जैसे अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और बैंक में जाकर के जमा कराते हैं, और वहां पर बैंक मैनेजर केवल एक सिग्नेचर करके देता है, वहां केवल बैंक मैनेजर के सिग्नेचर के ऊपर हमारी श्रद्धा है, परंतु उसी बैंक मैनेजर को यदि कभी अपन पैसा लेने के लिए वापस जाते हैं और बराबर जब कोई टॉकिंग नहीं होती है तो बाहर आकर के उसी मैनेजर को हम भला बुरा कह देते हैं, तो वो केवल सरता, वहां केवल कोरी सरता है, वो आदर नहीं है। यदि हमें अपने गुरुजनों से, अपने परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे, हमारी जो कुल की जो परंपरा है, कुल की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस ज्ञान को यदि अर्जित करना है बच्चों, तो अपने परिवार के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो वयोवृद्ध है, हम उनके पास में बैठे। आजकल किसी को बैठने का समय नहीं है, क्योंकि हम सब अपना वो हाथ में लेकर के चलाते रहते हैं। कभी हम अपने परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, उनके पास में बैठेंगे तो बहनें भाइयों बच्चों जीवन का बहुत बड़ा तत्व अपन को जानने को मिलेगा। और जब तक हम उनके पास में नहीं बैठेंगे तो हमारी कुल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उस संस्कार का अपने हृदय के अंदर आत्मसात नहीं होगा। तो हम यहाँ पर गुरु जी के चरणों में बैठे हैं आज, यहाँ पर यही कामना करें कि हे भगवान वो शक्ति दे, वो बल दे, वो सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन के अंदर जो जीवन का तत्व है उसको हम प्राप्त कर ले। जीवन, मनुष्य जीवन जिसमें सार्थक होवे, वो सार्थकता हमको प्राप्त हो जावे, इतनी हम गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
1: शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योम बद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम सतियों एवं रणबांकुरों की भूमि मारवाड़ राजस्थान के पाली जाडन विश्व प्रसिद्ध ओम दीप गुरुकुल के प्रांगण में परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बाद विश्व में सर्वाधिक भ्रमण करने वाले विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव द्वादश स्वरूप में विराजमान उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन इस संस्था के महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी फूलपुरी जी महाराज और जाडन के पास में ही विराजमान सोजत में देश के परम विद्वान वेदांत मार्तंड सभी दर्शन एवं शास्त्रों के प्रकांड विद्वान वेदों के ज्ञाता महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरी जी महाराज और इसी संस्था के महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी महाराज के परम कृपा पात्र जयपुर से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और संस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अवतार पुरी जी महाराज साथ ही सभी को कंधे से कंधा मिलाकर सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में सहयोग देने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय राजेंद्रपुरी जी महाराज, मंचासीन सभी संत वृंद और हमारे शिक्षक वर्ग जो देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, सभी हमारे अध्यापकगण और देश का भविष्य हमारे छोटे प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है। ओम दीप गुरुकुल जो विश्व प्रसिद्ध है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम है, उसकी द्वितीय पाठोत्सव कहें, वर्षगांठ कहें, मनाया जा रहा है। और आज इसी स्कूल के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे तो उन्होंने भी एजुकेशन कॉलेज की भी ली थी और शास्त्र की भी ली थी। स्वामी महेश्वरन जी महाराज ने भी कॉलेज की दीक्षा भी ली और साथ साथ में अध्यात्म और शास्त्रों की शिक्षा भी ली। इसलिए शास्त्र में आता है सा विद्या या विमुक्ते, विद्या हमें वो नहीं चाहिए जो केवल हमें शिक्षा प्रदान करे, नास्तिक बनाए, विदेशों में जाकर के माता पिता के संस्कार को भूल जाए, देश की संस्कृति को भूल जाए। हमें विद्या वह चाहिए जो देश में रहें या विदेश में रहें, देश की संस्कृति, संस्कार, माता पिता का सम्मान और हमारे गुरुजनों का आदर सिखाए। मैं कई बार ये कहा करता हूँ, हम एजुकेशन तो लेते हैं, आजकल मैं चर्चा करूँगी यदि उग्रवादियों की, बम विस्फोट करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को जलाते हैं, जगह जगह उपद्रव करते हैं, जन हत्या करते हैं, स्कूलों में बम विस्फोट करके बालकों की हत्या करते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं पता है आपको? सब हाई एजुकेटेड है, सारे के सारे हाई एजुकेटेड है, MBA, MCA, MTech, BTech, IIT, IIM किए हुए, जो हमारा आपको बहुत कम शिक्षा मिलती है, लेकिन वो काम क्या करते हैं? बम विस्फोट करके लोगों को मारना, संस्कृति को समाप्त करना, देश में गद्दारी पैदा करना, देश में विस्फोट करके सबको उजाड़ना, संस्कृति उजाड़ना, संस्कार जाना, सब कुछ करते हैं। और याद रखना, एक हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, योगी जी भी पढ़े लिखे हैं, और ये संत महापुरुष जो बैठे हैं ये सब लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी पढ़ लिख करके आए। मैं पहले सिविल का इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने वेदांताचार्य, षड्दर्शनाचार्य, फिर मैंने वेदों के ऊपर PhD किया। पढ़े लिखे आप भी पढ़ेंगे, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन नहीं होगी तो पशु के समान जीवन बिताना पड़ता है, पशु की तरह। एजुकेशन कोई भी हो, मैं कहा करता हूं हर जगह जाकर के, माता पिता कितनी भी मेहनत करें, चाहे दो रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, अच्छे कपड़े की जगह फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, समय आ जाए मकान को भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाना, और समय मिले तो माताओं से अनुरोध करता हूं सोने चांदी के अपने जितने भी गहने हैं उनको भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाए। एजुकेशन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन वो एजुकेशन आतंकवादियों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को IIT, IIM, MBA, MCA, MTech, BTech कराते हैं, लेकिन वो आतंकवादी बनकर के जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को मारते हैं, संस्कार संस्कृति को नष्ट करते हैं, देश को पथभ्रष्ट करते हैं। और यदि वही संस्कृति संस्कार संस्कृति से संपन्न होगी, MTech, BTech करें, IIT, IIM करें, MBA, MCA करें, लेकिन वो संस्कार के सहित होगी, तो वही नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे देश पर गौरव करके देश के नाम को, आपके नाम को, मारवाड़ के नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे। मारवाड़ में पढ़े लिखे तो लाखों लोग हैं, लेकिन स्वामी महेश्वरनपुरी जी ने जो कार्य करके दिखाया, विश्व के 100 से ऊपर देशों में भ्रमण करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। वो चाहते तो फैक्ट्रियां खोल सकते थे, वो चाहते तो होटल खोल सकते थे, वो चाहते तो और सब कुछ खोल सकते थे, लेकिन खोला क्या? ओम दीप गुरुकुल विद्यालय खोला है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, गौशालाएं खोली हैं, किसके लिए? आप सबके लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए इस सनातन का नाम पूरे विश्व में हो। संत पैसा आएगा तो सनातन के लिए लगाते हैं, विश्व में नाम है ओम दिव्य गुरुकुल का। कल आप भी कल विदेश में जाएंगे तो आप कहेंगे हम उस ओम दिव्य गुरुकुल विद्यालय के पढ़े हुए हैं जहां स्वामी महेशानंद जी महाराज ने बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में नाम है। आपका एक स्वाभिमान होगा हम वहां पर पढ़े हुए, हम लोग भी कहते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी वो देश मिटने में समय नहीं लगता है। आज हमें अपनी देश की संस्कृति संस्कार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। वो कब पहुंचेगी? जब हमारे एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति होगी। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के जीवन में देखिए संस्कार संस्कृति को लेकर के विश्व 100 से ऊपर देशों में जाकर के प्रचार किया है। जार्डन का नाम विश्व के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। और अब वही दायित्व हमारे फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, इन सबके कंधों पर है। ऊंचाई पर पहुंचना तो सरल होता है लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना सबसे कठिन होता है। आज ये संस्था इतनी बड़ी बनी है, कल आप भी गौरव करेंगे। आप कहीं जोधपुर में आएंगे तो हम कहेंगे वो बालक हैं जो स्वामी महेशानंदपुरी जी महाराज के विद्यालय में पढ़े हुए, विश्व में जिनका नाम है। इस नाम को बरकरार रखना है, नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। हमें वो संस्कृति नहीं चाहिए जो अमेरिका में एजुकेशन लेकर के अमेरिका में नौकरी करते हैं और माता जी का शरीर शांत होता है तो वहां से चाचा कहते हैं चाचा जी वीडियो कॉलिंग करके देख लेंगे, माताजी की अंतिम क्रिया आप कर दीजिए। ऐसी संस्कृति, ऐसी एजुकेशन हमको नहीं चाहिए। हमको वो संस्कृति चाहिए जो माता पिता से जुड़ाव हो, जिन्होंने फटे कपड़े पहन करके बच्चे को पढ़ाया, भूखे रह करके बच्चे को पढ़ाया, कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाया, और वो अमेरिका में जाकर के कहते कि हम लाख रुपए खर्च करके नहीं आ सकते। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए चाचा जी। वो संस्कृति हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो माता के चरणों में बैठ करके माता का चरण स्पर्श करे, पिताजी के चरणों में बैठ करके पिताजी का चरण स्पर्श करे और कहे पिताजी आप धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आपके जैसे माता पिता हमको मिले। जो गौरव करे अपने माता पिता पर, अपनी संस्कृति पर, संस्कार पर, अपने मारवाड़ पर। इसलिए स्वामी फूलपुरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए इन्होंने वो वट वृक्ष लगाया है। आने वाले लाखों सालों तक बीज देकर के विश्व में नए ऐसे गुरुकुल, नए ऐसे विद्यालय, नए ऐसे मेडिकल कॉलेज खुलवाता रहेगा। इसलिए महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सब बच्चों को साधुवाद कि आप आगे चल करके विवेकानंद जी की तरह देश के कोने कोने में निकले, देश के कोने कोने में सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराएं और गर्व महसूस करें कि स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने देश के 100 देशों, विश्व के 100 देशों से ऊपर सनातन संस्कृति पहुंचाया। आप देश के 180-200 के आसपास देश हैं, 202 हैं या 203 हैं इस समय वर्तमान में, उन सब कोनों में जाकर के इस ओम दीप गुरुकुल के नाम को वहां पर पहुंचाएं। आपके लिए साधुवाद, आप धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: विश्वानि देवस्सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhaya, Ananta Sri Bhushita, Shraddhaya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
1: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: Aur mujhe aisa lag raha hai कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
1: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
1: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
1: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
1: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
1: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
1: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
1: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
1: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
1: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
1: enter this the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार-बार नहीं मिलता.
1: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं. एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है.
1: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है. ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है.
1: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है.
1: We got a very limited time and we have to do good in this time.
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति, नाचेद यहाँ वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरः, प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति. जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा.
1: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं. जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.

गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहरं

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति माने धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: So this is like when Vishwaguruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: So whatever the Vishwaguruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: you have to follow,
0: इसको धीरति बोलते हैं।
1: This is called धीरति,
0: क्षमा,
1: endurance, patience.
0: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। I am very sorry.
1: So first one was patience. The second one is to forgive. So whatever, whoever does something, you either forgive to them or you forgive to others.
0: Primary की शिक्षा में जो wife husband है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: So in the first class to the husband and wife, they should think about God.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना। नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
0: पवित्रता,
1: purity.
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी,
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मनी शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृती क्षमा दमयस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोज दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध हो सत्वशुति तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind. Isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. धी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: ये कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: He's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बंबई से सूरत बंबई सूरत रोड नाम हो गया और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बंबई गोइंग टू सूरत दिस इज कॉल्ड बंबई सूरत रोड व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़के पास होना।
1: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
0: यम, नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि पुस्तक। यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम
1: the book which tells us how to control ourselves is called नियम
0: नियम यम अपने को रोकना
1: यम is the book which tells us how to stop ourselves
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश चित्त वृत्ति निरोधा वो नियम हो गया
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पास पालन करना उसको धारण करना उसको अपने जीवन में लागू करना
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ दिस इज कॉल्ड नियम
0: यम नियम के बाद में आसन है
1: After that is yes.
0: बॉडी को सेट करना बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम
1: so
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन And the fourth book about pranayama and how to control the air and use it for the purification.
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर 5 ईयर है वो 5 ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की मटेरियल की सामान की
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणास 5 टाइप्स ऑफ एयर which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रतिहार आता. प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रतिहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वनसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वनसेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यम एंड नियम द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा चमनप्रास है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na.
3: Baba Ramdev ji.
0: Kaha? Aja wo. Hamara chela hai wo. Unko pata hai sabko. To usme ye hai. Ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana, jo swayam ka judgment hai, swayam ki swikriti hai. स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास
1: लेगा, मींस धारणा
2: नहीं लेगा,
0: नहीं नो धारणा.
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द डोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.

0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं।
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को पीढ़ी को पार करो, तुम भी सन्यास ले लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नो नो नो नो नो।
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया है।
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, विच वन यू विल टेक?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: फ्रॉम ऑल ऑफ
0: 500 का ना, 500 का?
1: फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू विल टेक
0: 500 का, ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे, 200 का नहीं। कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
1: है। So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत। तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है।
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है। अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this after the meditation you will continue thinking, or during the meditation you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता
1: है. There is a family.
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है. समाधि, हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते.
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: Sabikalp samadhi usko kehte hain jahan par sadhak pakka hai aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai aur jahan ki uska god jo usko pana hai wo bhi uski samajh mein hai, isko bolte hain sabikalp samadhi.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है, जहाँ पर न तो शिष्य रहता है, न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं. Aham Brahmasmi.
1: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening. So listen only what विश्व गुरु जी says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु जी, नथिंग एल्स.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: रिमेम्बरिंग द स्मरण भक्ति इज व्हेन यू Remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: सो इफ यू डू सम पूजा, इफ यू डू सम सेरेमोनी, डू द सेरेमोनी फॉर गॉड एंड गुरु. इफ यू फॉलो समबडी, फॉलो गुरु एंड गॉड, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं।

0: आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं।
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु।
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है तो उस समय पर गॉड भगवान गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू बिलीव एंड ट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड।
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया। सखा मित्र, फ्रेंड।
1: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है। बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा। चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट।
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग।
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका।
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं। उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई।
1: Seven books.
0: उसमें पहली बुक्स क्या है? सुभिच्छा। क्या है भैया? सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरुजी। अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना।
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू।
0: अच्छा अब दूसरा,
2: मोस्ट वेलकम, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, आई हैव नो प्रॉब्लम, कम।
0: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा अब बोलो गुरुजी,
1: बोलो
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले संन्यास।
1: द सेकंड वन इज ओ गुरुजी, आई थिंक द सेम लाइक यू एंड गुरुजी सेज ओके देन टेक संन्यास।
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा।
0: उसको विचारणा बोलते हैं।
1: विचारणा मींस थिंकिंग, इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुस थॉट्स आर इक्वल, यू आर थिंकिंग लाइक योर गुरु।
0: तन मानसा, इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा। गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है, इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा, व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु

0: Guru slowly starts to be transferred to the small pot of Shishya, of disciple.
1: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat. Prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat, panchama sansayatmaka, padartha bhavani sashti, saptami triyaga smritam. To. चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते.
0: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसाइपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग.
1: पदार्था भावनी कहते हैं, पदार्था भावनी. जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन.
0: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर.
1: पदार्थाभावनी का अर्थ ये है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थ अभाव नहीं बोलते.
0: पदार्थ अभाव, द डिटैचमेंट फ्रॉम द एनी थिंग्स इज लाइक यू कैन हैव अ स्टोन और यू कैन हैव अ गोल्ड फॉर यू, दिस इज इक्वल.
1: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
0: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन.
1: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: पदार्था भावनी, जहाँ सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: सो ओनली आफ्टर यू गेट डिटैच्ड फॉर योर फैमिली एंड सो ऑन, यू कैन कम टू दिस डिटैचमेंट फ्रॉम द थिंग्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड लाइक गोल्ड एंड ऑल दिस.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर, वो क्या ना बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: सो लाइक इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग.
1: इसको पदार्था भाव नहीं बोलते हैं कि किसी से भी, किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्ति आपो, न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थिति होने का, स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभाव नहीं बोलते हैं.
0: सो दिस इज दैट बुक पदार्थाभाव. देयर इज नो फियर ऑफ स्नेक्स, देयर इज नो फियर ऑफ डेथ, देयर इज नो फियर दैट फायर विल बर्न यू, यू विल ड्राउन इन द वाटर, दैट एनीथिंग विल हैपन विद एनी एलिमेंट. सो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म.
1: तुरिया अवस्था उसको कहते हैं, जब आपके चारों तरफ सामग्री पड़ी हो, वस्तु पड़ी हो, सब कुछ जितना भी संसार में वो

0: पढ़ा हुआ हो और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
1: And then afterwards, is turiyavastha the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract at all.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की वर्क की वो हमने सफल कर दिया।
1: So in our lives, from the starting point, we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the God that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti
1: Siddhip Narayan Bhagwan Ki Jai Devadi Dev Deveshwar Mahadeva Ki Jai Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan Ki Jai Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj Ki Jai

0: सदाजाड्यवस्त्र विपत्तौ प्रविष्टा प्रवष्टा सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
1: इति भवानी अष्टकं संपूर्णम्।

भगवान की जय हो। अतुलित बल धामा हेम शैलावद है, हनुमान चालीसा कर रहे थे ना, अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहाम धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम्

0: माणिम।
1: एक वो भजन गा रहे थे ना आप, कौन सा वो? और फिर महामंडलेश्वर विपुल जी महाराज बोलेंगे कुछ, है ना?

ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा

जहर पिया जीवन दिया, ओ हो जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तुम, आयो शरण तिहार, शंभो तार तार तुम।

हिंदु धर्म सम्रत सतगुरु स्वामी माधव नंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर स्वामी तत्पुरी जी महाराज की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो। महामंडलेश्वर स्वामी विकपुरी जी महाराज की जय।

0: वासी। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत सनातन धर्म की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो महामंडलेश्वर स्वामी विवेकपुर जी महाराज की जय।
1: परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय।

0: देवकी जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान
0: की जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान
0: की जय।
1: श्री गजानन जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तव पशूनां पतिं पापनाशं परेशं

0: इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं वेद सार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीप नारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। संभव

ओम शलभपुरजी महादेव की जय। वादिदेवेश्वर महादेव की जय। सुदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सदगुरुदेव भगवान

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम शांति शांति शांति ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalesha Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में